0: 107 FM रेनबो पर इस्तकबाल करती है आपकी दोस्त सविता। जी हाँ, नॉन स्टॉप गपशप में हाजिर हो चुके हैं हम और पूरे एक घंटा, जी हाँ 10:03 हो चुके हैं और पूरा एक घंटा हम और आप रहने वाले हैं। तो फिलहाल तो एक गीत के साथ शुरुआत कर देते हैं कार्यक्रम की।
1: क्योंकि तुम खुद एक

जी हाँ दोस्तों, हम हैं नए तो अंदाज हो क्यों पुराना, और पुराने की बात जब चलती है तो लोग सोचने लगते हैं अरे बड़े बुजुर्ग से हो गए, बड़े ये हो गए, वो हो गए, ओल्ड फैशन्ड होंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, आज नए के साथ पुराने भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वही अपनी एक कहते हैं ना कि एकदम ऊर्जावान होकर के। और फिलहाल आपने जो सुने दो गाने, आई एम श्योर कि आप भी एकदम ऊर्जा से भर चुके होंगे और सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या बातें आज होने वाली हैं, क्योंकि आँखों से दो बूंदें लेकर एक समंदर हो जाना, हमने सीखा बेघर रहकर बेघर का घर हो जाना। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट आए और कितने भी दुख आए, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को यदि हम काट दें, काटे नहीं बल्कि सवार दें, तो बेहतर होता है। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कल था मातृ दिवस और आप सभी ने डेडिकेट किया होगा ये दिन अपनी माताओं के लिए। बिल्कुल, दादी माँ, नानी माँ भी हमारी माँ जैसी होती हैं, उनसे आपने ढेर सारी किस्से कहानियाँ सुने होंगे। माँओं के साथ स्कूल में कदम रखते ही ऐतिहासिक कहानियों का आकर्षण भी आपको खींचने लगा होगा। और जब सुने हुए किस्से आँखों से देखते हैं, उंगलियों से छूने का एहसास पाते हैं, तो दिल और दिमाग रोमांच से भर उठता है, जी उठता है। तो कुछ ऐसे ही किस्सों को आपके साथ हम साझा करेंगे, ताकि हम अपने जो इतिहास है उसको भूले ना। ये जो इतिहास है वो दोस्तों हमारे लिए एक गर्व होता है, गौरव होता है। दोस्तों आज के दिन कुछ खास लोग थे जिनका हुआ था जन्म और वो हमेशा के लिए इतिहास में हो गए दर्ज। जी हाँ, विनीत सरन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वे उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भी पूर्व न्यायाधीश हैं। सरन को 7 अगस्त 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनका जन्म हुआ था 11 मई 1957 को। इसके अलावा मलयालम फिल्मों के भारतीय अभिनेता जिन्होंने खलनायक और कई अन्य भूमिकाएं निभाई, उन्होंने हिंदी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया। अबू सलीम ने, इनका भी जन्म

11 मई 1956 को हुआ था। मृणाली विक्रम साराभाई का जन्म भी 11 मई 1918 को हुआ। एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर, प्रशिक्षक, अहमदाबाद स्थित दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक और निर्देशक थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कारों पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। साराभाई का जन्म भी 11 मई 1918 को हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, आसफ अली, जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात भारतीय वकील थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले भारतीय राजदूत थे। 2 कार्यकालों के लिए ओडिशा का राज्यपाल, फिर बाद में स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए थे। उनका जन्म भी 1888 में हुआ था और उन्होंने स्वतंत्र भारत के योगदान में अपना एक महत्वपूर्ण कार्य किया। तो दोस्तों, बात की हमने आज के दिन कुछ महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, बात हमने उनकी की। फिलहाल एक गीत सुनेंगे और उसके बाद बताएंगे आपको कि कुछ और ऐतिहासिक तथ्य 11 मई को वो कौन से थे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए।

जी हाँ दोस्तों, नॉन स्टॉप गपशप पर एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी दोस्त सविता 107 FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप। और भारतीय और विश्व इतिहास में 11 मई को घटित होने वाली कौन सी वो घटनाएं थी वो साझा कर रहे हैं हम आपके साथ। तो 1502 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडीज़ की चौथी और अंतिम यात्रा शुरू की। 1686 में भौतिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले ओटो वॉन ग्यूरिक का निधन हुआ। 1893 में हेनरी डेस्ग्रेंज ने एक घंटे में 35.325 किलोमीटर की दूरी तय करके पहला साइकिल विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके अलावा जी हाँ दोस्तों, 11 मई 1912 में पाकिस्तानी लेखक और नाटककार सादत हसन मंटो का जन्म हुआ। दोस्तों इसके अलावा आज के दिन जो खास दिवस मनाए जाते हैं वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत में देश में हुई तकनीकी प्रगति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।

दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हमारे बच्चे यदि कुछ खास करते हैं तो हम उन पर नाज करते हैं, और हमारे ही वो बच्चे होते हैं जो देश के बड़े इंजीनियर्स बनते हैं, बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े डॉक्टर बनते हैं, बड़े मैकेनिक बनते हैं, बड़े कुछ ऐसे व्यवसायी बनते हैं, शिल्पकार बनते हैं, हस्तकला से निर्मित कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर देते हैं जो कि सिर्फ देश में ही नहीं विश्व भर में उनकी पहचान बन जाती है। और हम उन पर तब एक व्यक्तिगत तौर पर नहीं, उन्हें एक

राष्ट्र के रूप में जानते हैं, यानी पूरे देश के नाम से उनको जाना जाता है। और ऐसे वक्त में हम सिर्फ उस वक्त को सुनहरे इतिहास में लिखते हैं। ऐसा ही कुछ किया है भारत ने अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण। दोस्तों, भारत ने ओडिशा तट से दूर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV एक बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड है जिसमें कई अस्त्र होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग लक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से हमला करने में सक्षम होता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिसाइल प्रणाली का परीक्षण शुक्रवार को किया गया। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने 8 मई को ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल का कई पेलोड के साथ परीक्षण किया गया, जिसमें हिंद महासागर के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसकी चमकदार रोशनी और टेल बांग्लादेश के कई इलाकों तक साफ दिखाई दी। दोस्तों, ये जो हमने किया है, जो मिसाइल टेस्ट किया है, ये भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। और सिर्फ गौरवपूर्ण क्षण ही नहीं है, बल्कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं जब ऐसी मिसाइल हो या अस्त्र हो, क्योंकि हमने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान देखा कि किस तरह से भारत ने अपने दुश्मन को आंखें तरेर कर और आंखें मिला करके उसे धूल चटाई, सिर्फ इस कारण से क्योंकि हम ऐसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित थे।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से आपने सुना किशोर कुमार को, कभी गाता कबीरा का है एक तारा मेरे भीतर, कभी मैं देखता हूँ ये जहाँ सारा मेरे भीतर। दोस्तों हमारे दिल में कितना कुछ होता है, कितना गुबार होता है, कितनी बातें होती हैं जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार वक्त की नज़ाकत देखते हुए चुप रह जाते हैं, खामोश रह जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ हमें कहना है लेकिन नहीं कहना, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा उस इंसान से कहने के लिए जिसको हमें कहना है। और कई बार बिना कहे आँखों से आप उन्हें समझा देते हैं। बातें तो मुझे करनी है और करीब 10:30:36 हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल दिल कर रहा है कि एक गीत और सुना दें आपको और उसके बाद हम बातें करने वाले हैं।

जी हाँ दोस्तों, पता नहीं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर मैं कहूँगी कि ये जो हम और आप रूबरू हो पा रहे हैं और इतने खूबसूरत नगमे जो सुन पा रहे हैं, उसका तो बस एक ही रीज़न है, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी विकास के युग में आज हम जी रहे हैं। और आज का दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ऐसे ही ना जाने कितने उपकरणों का आज के दिन, जी हाँ, उपकरणों का इजाद हुआ है, और जिन्होंने हमारी डे टू डे लाइफ, हमारे जो दैनिक जीवन है, उसको कितना आसान और आरामदायक बना दिया है, और कितनी कठिनाइयों भरे परेशानियों के क्षणों में भी ये जो तकनीक है वो हमारे काम आती है और हमें निजात दिला देती है। तो आज हम उस दिन को याद करते हैं और हमारे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर हमारे मैकेनिक्स हैं, उन सब को हम डेडिकेट करते हैं आज का दिन, और उनके प्रति हम धन्यवाद देते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं कि आज जो सुकून की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा बदलता हुआ परिदृश्य है। तो बातें हम करने वाले हैं, जी हाँ, आज के सेगमेंट की, कि आज के दिन वो कौन से साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ आपके शहर यानी कोलकाता में होने वाली हैं। बातें कर लें क्या? जी हाँ, थोड़ी सी जो हल छोटी सी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दोस्तों, 11 मई को कोलकाता में मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, जैसे आर्ट वर्कशॉप्स, रचनात्मक ग्रीष्मकालीन शिविर, जिन्हें हम इंग्लिश में कह देते हैं ना समर कैंप्स, वो होते हैं, और शहर में अपने जीवंत साहित्यिक और कलात्मक गतिविधियों के लिए हमारा कोलकाता शहर तो जाना जाता है, तो वो भी सब होते हैं। रविंद्र जयंती उत्सव पर टैगोर की विरासत को समर्पित करते इन आयोजनों में संगीत, कविता पाठ, नृत्य नाटिकाएं, साहित्यिक चर्चाएं शामिल होती हैं। शहर के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र जैसे कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी में अक्सर विशेष कला प्रदर्शनियों और संगीतमय कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कला प्रेमियों के लिए एलायंस फ्रांसिस डू बेंगले जैसे स्थानों पर नियमित रूप से लाइव थिएटर, समकालीन नाटकों का मंचन भी किया जाता है, तो जो इन सब कला के शौकीन हैं वो एंजॉय कर सकते हैं।

0: जाना कहाँ है?
1: बिल्कुल जाना आपको कहाँ है? क्या आज आपकी कोई मीटिंग है और आप घबरा रहे हैं? कहीं आपको रिव्यू मीटिंग में बोलना है क्या? तो दोस्तों, आपको एक चुटकी नुस्खा हम दे देते हैं, अगर आप घबरा जाते हैं तो। बस छोटी छोटी टिप्स हैं जो देना चाहेंगे कि नौकरी करने वालों को अक्सर वर्क रिव्यू मीटिंग की टेंशन हो ही जाती है, और ये कोई असाधारण बात तो है नहीं। मीटिंग में आपके काम के बारे में आपके सीनियर्स आपसे रिव्यू लेते ही हैं और कहते हैं कि आगे की प्लानिंग क्या है, इसके बारे में बातचीत होती है। और अक्सर इस मीटिंग में जब आप बोलने जाते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और मीटिंग का नाम आते ही बस लगता है या टेंशन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, या फिर ऑफिस जाने का ही दिल नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे ऐसे विचार आते हैं ना, कई बार तो लगता है कि थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा पहले पहुंच जाएं ताकि नर्वसनेस ना रहे, रिलैक्स कर सकें, अपने कमरे में बैठ कर के सोच सके, ऐसा भी होता है। और घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि जो आपने तैयारी की है वो भी ख़राब हो जाती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो बस करना क्या है, मीटिंग की यदि ऐसा होने वाला है तो मीटिंग की तैयारी कर लें, मीटिंग में जाने से पहले नोट्स बना करके रख लें। अरे हम भी तो ये जो प्रोग्राम करने आते हैं ना, बड़ी घबराहट होती है कि पता नहीं क्या गलत निकल जाएगा। दोस्तों ऐसा होता है जब लाइव आप कोई भी काम करने जाते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है, और हमारे दोस्त तो हमें माफ़ कर देते हैं ऑलवेज। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हम बनाते हैं, कुछ सोचते हैं कि किस थीम पर आज बोलना है, आपके साथ कौन से वो गाने हैं जो आपको सुनवाने हैं, ऐसा ऐसा कुछ मन में रहता है विचार कि एकदम फैंटास्टिक बढ़िया जैसा प्रोग्राम हम कर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें नाकामयाब हो ही जाते हैं, नहीं कर पाते वैसा प्रेजेंटेशन जैसा हम चाहते हैं। तो उसके लिए बस यही करना है कि अच्छे पॉइंट्स बना लेते हैं आप कर लें, और जैसा जितना बोलने के लिए कहा जाए उतना ही बोलें, अचीवमेंट के छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें, उनको बना करके अच्छे से प्रेजेंट करें और अपनी बात को स्पष्ट वाक्यों में कहें। बस ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर आपका जो रिव्यू मीटिंग होने वाली है ना, आप उसमें हीरो बन करके निकलेंगे। बिल्कुल दोस्तों,

जी हाँ दोस्तों, 10:57 और 36 सेकंड हो चुके हैं और कार्यक्रम के हम जी हाँ समाप्ति के मोड़ पर आ पहुँचे हैं और मिलेंगे आपके साथ 11:10 पर एफएम गोल्ड यानी खरा सोना पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। और फिलहाल आपकी दोस्त आपसे चाहेगी इजाज़त। चलते चलते एक मूल मंत्र आपके लिए दिए जा रहे हैं कि अपने जीवन की कहानी लिखते समय कलम किसी और को एकदम ना दें। बिल्कुल हमें जो ज़िंदगी में कहना है, जो सुनना है

और जो करना है वो खुद अपने संकल्पों के साथ उनको हमें एक इतिहास को दोहराना है। और इसी के साथ आपकी दोस्त सविता आपसे चाहेगी इजाज़त। आप सुनते रहिए 107 FM रेनबो नॉन स्टॉप गपशप पर, और आज मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सविता।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू FM रेनबो 7 मेगाहर्ट्ज़। इट्स टाइम नाउ फॉर रेनबो रिदम्स, एंड रेनबो रिदम्स कम्स योर वे एवरी आफ्टरनून एट दिस very particular time. This is a show Mr. with you on this hot summer afternoon, and we're going to listen some wonderful music this afternoon on FM Rainbow. And let's begin with this beautiful track this afternoon, and who other than this particular track I think is the most suitable one for a hot summer afternoon. This is Shakira for you on FM Rainbow 7 megahertz and Rainbow Rhythms.

107 FM रेनबो दिल से दिल तक के सभी श्रोताओं का, सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है तीन का तड़का। 3:03 और मैं रहूंगी आपके साथ पूरे 4 बजे तक। और तीन का तड़का में सबसे पहले प्रकल्प प्रस्तुति।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं परियोजना प्रस्तुति और मैं हूं आपके आरजे पलक। लेकर आई हूं आज एक ऐसी बात जो बदल चुकी है देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी, और अगर आपने अब तक इसका फायदा नहीं उठाया है तो आज का शो सिर्फ आपके लिए है। मैं बात कर रही हूं स्किल इंडिया मिशन की। ये योजना शुरू हुई थी 2015 को, देश के युवा वर्ग और आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के सपने के साथ। और बात यही खत्म नहीं होती, इस योजना के तहत देश भर में विभिन्न ट्रेड्स और स्किल्स में मुफ्त या रियायती दरों पर ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, अब तक लाखों करोड़ों युवा इस योजना के तहत ट्रेनिंग लेकर नौकरी या स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं। आप यदि इसके फायदे नहीं जानते हैं तो आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। मुफ्त या सस्ती ट्रेनिंग की यदि बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ब्यूटी पार्लर, प्लम्बर, फिटर, कुकिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कई सेक्टर्स में ये प्रशिक्षण उपलब्ध है। ट्रेनिंग के बाद सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में मान्य होता है। रोजगार और स्वरोजगार में मदद भी इससे मिलती है, क्योंकि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाते हैं। वहीं स्वरोजगार के लिए भी गाइडेंस और लोन सुविधा उपलब्ध होती है। इससे हैरान होने के बाद क्या आप ये सोचकर परेशान हैं कि इस योजना से जुड़ने का तरीका क्या है? मैं बताती हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले www.skillindia.gov.in पर जाएं। वहां कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर फॉर्म भरें। कोर्स और ट्रेनिंग सेंटर चुनिए। अपनी रुचि के अनुसार कोर्स सिलेक्ट करें। अपने इलाके के नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त करें। दस्तावेज यानी कि अपना आधार कार्ड, पहचान

पत्र एड्रेस प्रूफ और फोटो जमा करनी होगी आपको, उसे अपलोड करें। चुने गए कोर्स में तय समय तक ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद परीक्षा देकर सर्टिफिकेट प्राप्त करें। सर्टिफिकेट मिलने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से रोजगार मेलों में शामिल होकर नौकरी के मौके पाए जा सकते हैं। आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि क्या आपको इसका लाभ मिल सकता है, क्या आप पात्र हैं। तो बता दूं कि 15 वर्ष से ऊपर के भारत के नागरिक और जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या नौकरी की तलाश में हैं, स्वरोजगार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवा इसके लिए पात्र हैं।

इसके अलावा आप स्किल इंडिया मिशन की वेबसाइट www.skillindia.gov.in और हेल्पलाइन नंबर 1800-123-9626 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीते सालों की इस यात्रा को कौशल का दशक बताया गया। 2015 में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन ने भारत के युवाओं को देश और विदेश दोनों जगह पर परिवर्तन की एक शक्ति बना दिया। मिशन के 10 साल पूरे होने हो चुके हैं और इस 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक चलने वाले समारोह का भी शुभारंभ हुआ था। सप्ताह भर चलने वाले सत्सव में हर राज्य के ITI कौशल केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी। इस उत्सव का समापन 22 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत स्किल नेक्स्ट 2025 कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसके दौरान स्कूली बच्चों के लिए AI कौशल पर एक समर्पित कार्यक्रम सहित प्रमुख कौशल पहलों पर शुभारंभ किया गया। और हाँ, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि जब हर एक व्यक्ति से जुड़ेगा तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। मैं हूं आपकी अपनी आरजे पलक और आप सुन रहे थे परियोजना प्रस्तुति। मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्किल इंडिया मिशन से जुड़िए और औरों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें।

और अब चलिए तीन का तड़का में लगाते हैं हमारे गाने का पहला तड़का फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से।

3:13 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक। और अब चलिए जाने तू या जाने ना से सुनते हैं ये बेहतरीन प्यारा सा सॉन्ग।

अभी जब आप ये गाना सुन रहे थे जाने तू या जाने ना फिल्म से, तो मेरे पास एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा है कि दुनिया तो एक ही है फिर भी सबकी अलग अलग है। और बिल्कुल सच है। मैंने सोचा इस पर और अब आपसे आपके साथ साझा करने जा रही हूँ कि ये दुनिया एक है पर हम सबकी जो दुनिया होती है जिसमें हम जीते हैं, जितने जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिन लोगों से हम अपनी खुशियां बांटते हैं, जिन लोगों के कारण हमें दुख होता है, वो दुनिया सबकी अलग अलग होती है। और इसलिए शायद ये कहा जाता है कि जिंदगी है इसे जी लो वरना ये गुजर जाएगी, जिंदगी है इसे जी लो वरना ये गुजर जाएगी, और दुनिया तो एक ही है फिर भी सबकी अलग अलग है, इसलिए अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी को जी लो। और अब वेक अप सिड से कविता सेठ अमितावा भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है? जी हाँ, भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1998 में पोखरण में हुए सफल परमाणु प्रशिक्षण और भारत की तकनीकी उपलब्धियों का प्रतीक है, जो विज्ञान, नवाचार और इंजीनियरिंग में राष्ट्र की प्रगति को सलाम करता है। इसी दिन भारत ने पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी और त्रिशूल मिसाइल का सफल प्रशिक्षण भी हुआ। राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु प्रशिक्षण किए गए और इसका नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी नवाचारों के महत्व को उजागर करना, विशेषकर युवा पीढ़ी को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना इस दिन का उद्देश्य है। और ये दिन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDP द्वारा मनाया जाता है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। और इस दिन उन्नत तकनीकों को विकसित करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। ये दिवस रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी शक्ति का जश्न मनाता है। और 1999 से ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया था। 3:26:26 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और अब एक और बेहतरीन गीत, पल बाय के।

तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया। पर ए दोस्त, खुद को हमेशा स्पेशल समझना, क्योंकि खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने कोई भी चीज़ फालतू में नहीं बनाई। 3:36 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं रहूँगी आपके साथ 4 बजे तक। फिलहाल

3:41:30 आप सुन रहे हैं तीन का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ only on 107 FM रेनबो दिल से दिल तक। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और अमेरिका में भारत के पहले राजदूत आसफ अली का जन्म आज ही के दिन 1888 को हुआ था। जी हाँ, 1888 को। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बचाव करना और 1946 में अंतरिम सरकार में

खेल मंत्री के रूप में कार्य करना शामिल है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बेहतरीन गीत आपके सामने ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं आपकी आरजे पलक लेकर आई हूँ कार्यक्रम 3 का तड़का।

बिल्कुल, जिंदगी दो पल की और सफर में इश्क करना सीखो। मंजिल तो जो है वो कुछ पल की मेहमान है, इसलिए लर्न टू लव द जर्नी रादर दैन द डेस्टिनेशन। ऑफकोर्स डेस्टिनेशन भी मायने रखता है, पर जिंदगी दो पल की है और इस सफर को एंजॉय करना बेहद जरूरी है। और अब

ब्रह्मास्त्र का सुनिए ये अगला गीत ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं आपकी आरजे पलक और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का।

3:50 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक। और अब पेश है एक और बेहतरीन गीत तीन का तड़का में।

3:55 यानी कि वक्त को फिर कुछ वक्त देने का वक्त हो चला है। आपकी आरजी पलक की पलक झपकाने का समय हो गया है। मुझे दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक के। और अब 3 का तड़का में आज का ये आखिरी गीत आपके सामने। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त और जी ले जरा।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। सुरों की महफिल,

107 FM रेनबो, दिल से दिल तक के सभी लिसनर्स का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने छायालोक में। 7:04:15 और मैं रहूंगी आपके साथ पूरे 9 बजे तक। बता दूं कि 8 बजे हम लेंगे 2 मिनट का अर्ली न्यूज़ ब्रेक और लौटूंगी मैं फिर 8:02 पे। आज छायालोक में रहेगा आपका साथ पूरे 9 बजे तक, जैसा कि मैंने बताया। और साथ ही बता दूं कि आज हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है सुरों की महफिल। चलिए सबसे पहले सुनते हैं सुरों की महफिल में ये रोमांटिक सॉन्ग अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म आशिकी 2 से।

इस गीत को लिखा मिठुन ने और संगीतबद्ध किया मिठुन ने। 7:09:28 आप सुन रहे हैं छाया लोक अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। दोस्तों, ये फिल्म मोहित सूरी ने निर्देशित की और इस फिल्म के निर्माता रहे भूषण कुमार और मुकेश भट्ट। ये फिल्म रिलीज हुई 26 अप्रैल 2013 को। राहुल जयकर, आदित्य रॉय कपूर एक मशहूर गायक है इस फिल्म में, जिसकी जिंदगी नशे की लत से टूट रही होती है। उसकी मुलाकात होती है आरोही से, यानी कि श्रद्धा कपूर से, जिन्होंने आरोही का इस फिल्म में रोल निभाया है, जो छोटे मंचों पर गाती है और बड़े सपने देखती है। राहुल उसकी आवाज से इतना प्रभावित होता है कि उसे स्टार बनाने का जिम्मा ले लेता है। दोनों गहरे प्यार में पड़ते हैं, मगर राहुल की आत्मविनाशक आदतें उनके रिश्ते को तोड़ने लगती है। ये गाना तुम ही हो उनके उसी अटूट प्रेम का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बेहतरीन गीत आपके सामने, ये

7:11:18, एक बार फिर बता दूं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक, और छायालोक में आज का साप्ताहिक कार्यक्रम सुरों की महफिल। और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे एक और बेहतरीन गीत के साथ, और ये गीत आपके सामने पेश है।

ये गीत मैंने चुना फिल्म कभी अलविदा ना कहना से, सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज, जावेद अख्तर के अल्फाज और शंकर एहसान लॉय का संगीत। और सुरों की महफिल में आगे बढ़ते हुए एक और रोमांटिक गीत आपके सामने पेश करूंगी रूप कुमार राठौड़ की आवाज में। इसे मैंने चुना है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से।

यशराज फिल्म्स निर्मित ये फिल्म आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट की। ये फिल्म 2008 में दिसंबर में रिलीज हुई और इस फिल्म में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा को साथ देखा गया। सुरिंदर सूरी साहनी यानी कि शाहरुख खान ने जिस किरदार को निभाया है उनका नाम, वो एक साधारण आदमी है जिनकी शादी एक कमजोर हालातों में तनु से होती है यानी कि अनुष्का शर्मा से। तनु इस रिश्ते में दिल से शामिल नहीं हो पाती और सूरी अपनी पत्नी का दिल जीतने के लिए एक नया रूप अपनाता है, राज का, जो कि बिल्कुल बेफिक्र और जोशीला है। तनु उस राज से आकर्षित होती है और अंत में उसे पता चलता है, वो समझती है कि असली प्यार उसी साधारण लेकिन उसे सच्चे उस सूरी से है। तुझमें रब दिखता है उसी रिश्ते की गहराई को दर्शाता है, उसी सच्चाई को दर्शाता है और उस रियलाइजेशन को दर्शाता है कि सच्चा प्यार किसी इंसान की रूप रंग से नहीं होता, सच्चा प्यार उस इंसान के दिल से होता है। 7:24 आपका और हमारा भी दिल का कनेक्शन है, तभी हमारी बातें आप तक पहुंचती है बिल्कुल दिल से।

से दिल तक। 107 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक, और छायालोक में आज मंडे को हम लेकर आते हैं कार्यक्रम सुरों की महफिल। मैं आपकी आरजे पलक रहूंगी आपके साथ पूरे 9 बजे तक। फिलहाल आगे बढ़ते हुए मोहित चौहान की आवाज़ में सुनिए जब भी मेट का ये गीत।

धर्मेश, दर्शन निर्मित ये फिल्म जब वी मेट 2007 में अक्टूबर को रिलीज हुई। इम्तियाज अली इसके निर्देशक रहे और इस फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर को देखा गया। आदित्य कश्यप, जिसका किरदार निभाया शाहिद कपूर ने, वो अपनी असफलताओं से टूट चुका हुआ एक बिजनेसमैन है जो ट्रेन में अपने जो है सपनों के बिखरने से टूटने पर कहीं चला जाने लगता है और तब उसकी मुलाकात ट्रेन में गीत ढिल्लो से होती है। गीत यानी करीना कपूर ने इस रोल को निभाया और वो एक जिद्दी और बेबाक लड़की है। दोनों एक सफर पर निकलते हैं जहां आदित्य को जीने का नया मकसद मिलता है और गीत भी अपने दर्द से बाहर निकालना सीखती है। वो अपने ब्रेकअप से और आदित्य भी अपने ब्रेकअप से। तुमसे ही उनके बीच खिले प्रेम की मधुर धुन है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और गीत आपके सामने पेश करूंगी। ये गीत है फिल्म दम लगा के हाइशा से और इसे आवाज दी है पैपॉन ने।

दम लगा के हैशा। इस मूवी को शरद कटारिया ने निर्देशित किया और ये फिल्म 2015 में फरवरी में रिलीज हुई। इस गीत को लिखा इरशाद कामिल ने, संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। इस फिल्म में प्रेम यानी कि आयुष्मान खुराना एक कम आत्मविश्वासी युवक होते हैं। मजबूरी में वो शादी करते हैं संध्या से और संध्या का किरदार भूमि पेडनेकर ने निभाया है और वो एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की होती है। शुरू में वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता मगर धीरे धीरे वो संध्या के धैर्य और सच्चे स्वभाव से प्यार करने लगता है, उसका दिल बदलने लगता है। मोह मोह के धागे ये जो गीत है उनके रिश्ते के बढ़ते बंधन को खूबसूरती से बुनता है। और अब एक और गीत आपके सामने पेश करती हूँ और ये अगला गीत है मोहित चौहान की आवाज में, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से। इस गीत को, इस फिल्म को मिलन लुथरिया ने निर्देशित किया और ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड कहानी में शोएब यानी इमरान हाशमी ने जिसका किरदार निभाया, शोएब का दिल जाता है मुमताज को, मुमताज पर।

मुमताज का रोल निभाया प्राची देसाई ने। शोएब की महत्वाकांक्षाएं और अपराध की दुनिया उनके रिश्ते को चुनौती देती है, फिर भी उनका प्रेम नाजुक लेकिन गहरा रहता है। पीलू वही गीत है जिसमें हिंसा की अंधेरी दुनिया में प्यार की रोशनी झलकती है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: सुरों की महफिल।
2: सेवन फोर्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव सेकेंड्स, आप सुन रहे हैं छायालोक में सुरों की महफिल अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और अब चलिए सुनते हैं श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह की आवाज में एजेंट विनोद का ये गीत। और इस गीत को लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

श्री राम राघवन निर्देशित ये फिल्म एजेंट विनोद 2012 में रिलीज हुई। इसके निर्माता रहे सैफ अली खान और दिनेश विजान। एजेंट विनोद खतरनाक मिशनों में उलझे रहते हैं, लेकिन उनके दिल में जगह बना लेती है रूबी। इन दोनों का किरदार निभाया है सैफ अली खान और करीना कपूर ने। रोमांच और जोखिम भरी इस कहानी में उनका रिश्ता गहराता है, और राबता उनका वो गीत है जिसमें रूहों का जुड़ाव महसूस होता है, जैसे उनका नाता कई जन्मों से हो। 7:51 आप सुन रहे हैं छायालोक में सुरों की महफिल अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और अब एक और बेहतरीन रोमांटिक म्यूजिकल गीत आपके सामने पेश करूंगी सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म बॉर्डर का ये गीत जावेद अख्तर ने लिखा और अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया। और इसी गीत के बाद 8 बजेंगे तब आप सुनेंगे न्यूज, और ये न्यूज होगा 2 मिनट का, यानी कि 8:02 पर एक बार फिर मैं लौटूंगी आपकी आरजे पलक लेकर कार्यक्रम छायालोक। फिलहाल सुनिए सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लो 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। छाया लो।
1: सुरों की महफिल,

8:08 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक। छायालोक में आज का सेगमेंट सुरों की महफिल। और न्यूज ब्रेक के इस पार जिस गीत के साथ मैंने आपका स्वागत किया, उसे मैंने चुना फिल्म बाजीराव मस्तानी से। इस खूबसूरत गीत को जावेद बशीर ने गाया, एएम तुराज ने लिखा और संजय लीला भंसाली ने खूबसूरत सा संगीत दिया। और बता दूं कि मैं रहूंगी अभी आपके साथ पूरे 9 बजे तक। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक और गीत सुनते हैं अमी मिश्रा की आवाज में फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। बता दूं कि इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया और ये फिल्म रिलीज हुई 2015 में। इसके निर्माता रहे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट। वसुधा एक दम घोटू शादीशुदा रिश्ते में फंसी होती है और उसकी जिंदगी में आता है आरोहण, जो उसे मोहब्बत का सच्चा

अर्थ सिखाता है। इस फिल्म में विद्या बालन और इमरान हाशमी को देखा गया, और ये गीत जो आपके सामने भी पेश करने जा रही हूँ उनके रिश्ते की मासूमियत और गहराई को खूबसूरती से पेश करता है। चलिए मैं भी पेश करती हूँ आपको इस खूबसूरत से गीत को।

8:14 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोक अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक। और छाया लोक में आज का हमारा सेगमेंट सुरों की महफिल, और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे।

एक और बेहतरीन गीत की ओर अरिजीत सिंह की आवाज में ए दिल है मुश्किल फिल्म से सुनेंगे आप इस गीत को। और इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। बता दो दोस्तों आपको कि ये फिल्म करण जौहर ने निर्देशित की और ये फिल्म रिलीज हुई 2016 अक्टूबर में। निर्माता रहे धर्मा प्रोडक्शंस और

इंसान इस फिल्म में एक मासूम लड़का होता है जो दोस्ती और प्यार के बीच उलझ जाता है, अलीजे और सबा के बीच। अलीजे का किरदार अनुष्का शर्मा ने निभाया, सबा का ऐश्वर्या राय बच्चन ने और अयान का रणबीर कपूर ने। अयान का एक तरफा प्यार उसे दर्द देता है, पर उसे मोहब्बत की असली गहराई का एहसास भी कराता है। ए दिल है मुश्किल, ये गीत उसी अधूरे प्यार की कसक को बयां करता है। तो चलिए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत।

और अब आइए अगला गीत रेखा भारद्वाज की आवाज में सुनते हैं फिल्म बर्फी से। 8:20 आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक में आज सुरो की महफिल अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

फिल्म बर्फी के इस गीत को शायद क्वाद्री ने लिखा और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया। दोस्तों बता दूं कि ये फिल्म अनुराग बासु ने डायरेक्ट की और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने निर्मित की। 2012 में रिलीज हुई ये फिल्म काफी हिट रही। बर्फी एक गुंगा बहरा लड़का मासूम मोहब्बत करता है श्रुति और झिलमिल दोनों से अलग अलग अंदाज में। रणबीर कपूर ने बर्फी का किरदार निभाया, इलियाना डिक्रूज ने श्रुति का और प्रियंका चोपड़ा ने झिलमिल का। फिर ले आया दिल अधूरी मोहब्बत और उन रिश्तों की कसक है जो दिल से मिटते नहीं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके सामने अरिजीत सिंह की आवाज में।

इम्तियाज अली निर्देशित ये फिल्म लव आजकल 2020 में रिलीज हुई। इसके निर्माता रहे दिनेश विजान और वीर और जोई, कार्तिक आर्यन और सारा अली खान के बीच का रिश्ता दोस्ती से प्यार तक पहुंचता है। ये गीत उनके बदलते रिश्ते और अधूरेपन की कहानी कहता है। और इस गीत को लिखा इरशाद कामिल ने, संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। 8:31 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोक अपनी आरजे पालक के साथ। और छाया लोक में आज हमारा सेगमेंट है सुरों की महफिल, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक। सुरों की महफिल।
1: आठ बजकर 32 मिनट और अब ये अगला गीत आपके सामने पेश करूंगी कबीर सिंह फिल्म से, अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार की आवाज में। इसे लिखा कुमार ने और संगीतबद्ध किया तुलसी कुमार ने। और बता दूं कि ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई। संदीप रेड्डी वांगा ने इसे निर्देशित किया, भूषण कुमार ने निर्मित किया। कबीर एक गुस्सेल मेडिकल छात्र जो पूरी तरह से बदल जाता है जब वो प्रीति से मिलता है। इस फिल्म में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी को देखा गया और तेरा बन जाऊंगा ये गीत उनकी गहरी मोहब्बत और एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये अगला गीत अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार की आवाज में।

सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस। रिलीज हुई ये फिल्म 15 अगस्त 2008 को। बचना ए हसीनो, केके और शिल्पा राव की आवाज में आपने सुना इस गीत को, खुदा जाने, जिसे लिखा अन्विता दत्त गुप्तन ने और संगीतबद्ध किया विशाल और शेखर ने। राज और गायत्री की प्रेम कहानी इस गीत में खुलती है। राज का दिल पहली बार सच्चे प्यार को पहचानता है और खुदा जाने उनकी मोहब्बत की शिद्दत को बयां करता है। इस फिल्म में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण नजर आए। और इस गीत के बाद अगला गीत आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज में।

रमैया वास्तवैया मूवी के गीत को आतिफ असलम और श्रेया घोषाल ने लिखा, प्रिया पांचाल ने लिखा और सचिन जिगर ने संगीतबद्ध किया। आवाज आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की। दोस्तों, ये फिल्म प्रभु देवा ने डायरेक्ट की और इसके निर्माता रहे कुमार एस तौरानी। इसे रिलीज किया गया 2013 में और जीने लगा हूँ ये गीत राम और सोनिया, उनकी मासूम मोहब्बत का पहला इजहार है इस फिल्म में। गिरीश कुमार और श्रुति हासन ने इस फिल्म में काम किया और वे अलग अलग दुनिया से आते हैं पर एक दूसरे के प्यार में बंध जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे, अगला गीत फिल्म दिलवाले से आप सुनेंगे, अरिजीत और अंतरा मित्रा की आवाज़ में। और इस फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया, गौरी खान ने प्रोड्यूस किया और ये फिल्म 2015 दिसंबर में रिलीज हुई। राज और मीरा, शाहरुख खान और काजोल के बीच की केमिस्ट्री और भी गहराई से सामने आती है इस अगले गीत में, गेरुआ में। उनका प्यार रंगों की तरह फैलता है भले ही उनके रास्ते मुश्किलों से भरे हैं।

गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती। 8:54 और 16 सेकंड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक अपनी आरजे फ्रेंड पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सुरों की महफिल।
2: और इस अगले आखिरी गीत को मैंने चुना है मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से, जिसे शरण शर्मा ने निर्देशित किया और ये धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है जो 2024 मई को रिलीज हुई। महेंद्र और महिमा, राजकुमार राव और जानवी कपूर ने इनका किरदार निभाया और वो शादीशुदा जिंदगी क्रिकेट के सपनों से उनकी जुड़ जाती है। महिमा अपने पति की प्रेरणा से मैदान में उतरती है और दोनों ही क्रिकेट प्रेमी होते हैं। ये गीत उनके रिश्ते की ताकत और साझेदारी का गीत है और इस गीत को बनी और सागर ने लिखा और हनी बनी ने संगीतबद्ध किया। और इसी के साथ वक्त को फिर कुछ वक्त देने का वक्त हो चला है, आपकी आरजे पलक के पलक झपकाने का समय हो गया है। मुझे दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक के। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त।

सॉन्ग नंबर 50 ने नैना तो से लगे। सॉन्ग नंबर 40 ने देखे छे रूपसागरे। सॉन्ग नंबर 30 ने मेरे हम नवा।

0: सॉन्ग नंबर 4 है दिल वाले चोर फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो दो। सॉन्ग नंबर 3 ते छिलो ओ सुंदरी फ्रॉम द फिल्म भूत बांग्ला। सॉन्ग नंबर 2 ते नो चेंज जब तलक फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2।
1: Rainbow Top 20 ते अखुन काउंटडाउन रीकैप। काउंटडाउन रीकैप। काउंटडाउन रीकैप। काउंटडाउन रीकैप। तुमी सुनछो बांग्ला ओ हिंदी गानेर काउंटडाउन शो Rainbow Top 20 only on 107 FM Rainbow। Rainbow Top 20। Rainbow Top 20।